सूखे काष्ट हरे आ रहा हूं। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तारिया, सिर सिर जग संभाहे ठाकुर, काहे मन पौ करिया। उड़े उड़े आवे सैको सा, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मैं सिमरन करिया। सब निधान दस सिधान, ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल साध बल जाइये, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख को अंकार, सत गुर प्रसाद सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन हरे अगम्मा अगम अपारा। सब त्यावें सब त्यावें तुद जी, हर सच्चे सृजन हारा, सब जीत मारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिने अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवें तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावें तुद जी, से जन जुग में सुख वासी, से मुकत पए, जिन हर त्याया जी, तिन तूटी चमकी फासी।

ऐसा महला चौथा। तू करता सचियार मैं डासाई, जो तो पावे सोई थी सी, जो तू दे सोई हूं पाई रहाऊ। सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुझे आप विछोड़िया आ मिलाया। तू दरिया ओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वरन कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तेत सवरडे पहिले निवासा, पाणी पावक तने किया। पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तें डूबी अले। मन एक ना चेत समूढ़ मना, हार बिसरत तेरे गुण गले आ रहा हो। ना जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुकदा जन्म पया। प्राणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाए विसरिया। आसा महला पंजवां।

संगत पाज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म ब्रेथा जात रंग माया कह रहाओ। जाप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कौ नानक कम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। कबियो बाच बेनती चौ पई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावो। आप हान दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परिवारा। सेवक सिख सब है करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे। सब बैरन को आसंगरे, पूरन होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सेख हमारे तारिये, चुन चुन शत्रु हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरे, मरण काल का त्रास निवरे। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री हस्तो जो करियो रक्षा। राख लियो मोय राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे।

तरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देवदैं जशन उपजायो। आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब दुकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब या करक करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्री सब तारे, आपे अपने बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत बेदा, जा को पेव न पावत बेदा। ताको कृपा हन न मानत, महा मूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न पेव। वापे अपने बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तुय तेती। तुमरा लखाना जाय पसारा, के बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप से अंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उभारे सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब काला, दुष्टिया रिष्ट ट्रै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाए निहरि हो, ताके ताप तनक मोह हरि हो। रिद सिद्ध कर मोसब होई, दुष्ट शाश्व सके न कोई।

सुवैया। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत शास्त्र भेद सब है, बहुभेद कहे हम एक न जाने ओ। श्री पान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहे हो सब तोय बखाने ओ। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाएं गहे की लाज वास गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा नंद, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्दोता गावो हरी केरा, मन जनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सुधारो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार्यो करे तेरा कार्ज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे, सुधारो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही करते रे। घर ता तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे, सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रे, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द रूपे आरो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन को, से नाम हर कह लागे। कहे नानक ता सुख हुआ, तित कर अन हद वाजे। आनंद सुनो वड पागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुने सच्ची बाणी, संत साजन पे सरसे, पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे। बेनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे आना हद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईयो, सत संतोख विचारो।

जिसके पाग मथन हर जेठ रंगीला तिस धनी, जिसके पाग मथन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर चुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों वडभागे हैं जिथे आप जी ने संध्या समय में मुख रखद शब्द चौंकी उपरंत सोता रहरा साहब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने। अज जेठ के महीने की आरंभता हुई है। इस संबंध में पंजवें पातशाह महाराज ने जो उपदेश बख्शिश किया है आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सहित बैठ के सरवण किया है। गुरद्वारा साहब विखे नगर सूसा अते सिंह एक्सकैवेटिंग कंपनी वालों भाई कुलदीप सिंह सोई परिवार वालों नगर लोहिया की संगत वालों अते भाई कुलविंदर सिंह धालीवाल परिवार वालों तीन श्री अखंड पाठ साहब आरंभ ने, जिन्हां दे भोग एतवार सवेरे 9:30 पैणगे उपरंत दीवान सजणगे। परिवारां ते नगर निवासियों वालों बेनती है आप जी ने तिने दिन दर्शन देने की कृपालता करनी जी। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का। सेवा निभाउणगे सत्कारयोग भाई हरजीत सिंह जी चमक दिल्ली वाले। आओ तिन्हां दे जथे पासों पावन बाणी दे पा पावन की गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। भुलां चुकां दी खिमा। आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जैसे हम सत गुर राख लिए छड़ा, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सखा, जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सत गुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले हैं।

पै सार पार, सा तन बिनो करे, तन बिनो करेंदी गुण सारेंदी, गुण सारी प्रभ पावा, साचे महल रहे बैरागी, आवण दे तायावा, निमाणी निताणी हर बिन, क्यों पावे सुख महली, नानक जेठ जाने तिस जैसी।

क्यों पावे सुख महली। नानक जेठ जाने तेसो जैसी, कर्म मिले गुण गहली। परम सम्मान योग जुगो जुगे अटल, चवर शतर सिंहासन दे मालक, वालिये कुल आलम राज्य के मुतलक दीन दुनी दे मालक, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी, तिन्हां दी पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर जुड़ बैठे, अते मीडिया दे राही घरां विच बैठ के साहिब जी दी पावन अमृतमई मुबारक बाणी नाल सांझ बना रहे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों वडभागियां, जिथे आप जीयां ने गुरु दर दे सत्कारत कीर्तनी जथे पासों पावन बाणी दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने। आओ कुछ घड़ियां रल मिल के आपां सारे भाईचारक सांझ दे रूप दे विच गुरु पिता ने जो पावन दात सानूं बख्शिश कीती है बाणी रूप विच उस नाल सांझ बनाउण दा यतन करिए। गुरमत विचारां दी सांझ करन तों पहलां गुरु दर दी असूलन मर्यादा नूं बहाल करदिआं पावन गुरु फतेह नाल सांझ बनाइए आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुसीं गुरु के प्यार वाले हो जो अपने रुझेवियां दे विचों समां कढ के गुरु की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे हो। जदों आपां गुरबाणी दा पाठ करदे हां ते आपां पोथी तों वेख के करदे हां, ओह करदे हां सानूं बहुती औखियाई नहीं हुंदी क्योंकि पोथी साडे सामणे हुंदी है। मैं रूटीन दे विच वी बैठ के पाठ कर सकदा, पर जदों आपां कथा दी गल करदे हां ते ये इदां है कि जिदां असीं किसी दे सन्मुख बैठ के गल करनी होवे ते दूजी गल बंदे दे अंदरों तां निकलदी आ जे उहनूं पहली दा हुंगारा जां पहली दा रिस्पोंस मिले ते, अदरवाइज निकलदी नहीं। तो तुसीं गुरु के प्यार वाले हो जे थोड़ी जी बेनती नूं प्रवान करदे आ इस पास्यों उठ के ते इधर आण के बैठो, ता कि क्योंकि इक ते हाल दे विच अपनी वैसे गिनती उस हिसाब दे नाल जे आपां सामणे बैठांगे ते फिर थोड़ी जी गल करनी ते समझनी सौखी हो जांदी। आस है आप जी बेनती प्रवान करोगे। पावन जो बचन दास ने आप संगतां दे नाल पाठ रूप दे विच सांझा कीता है, तुखारी राग दे विच गुरु नानक साहिब दा पदा है। 2 12वां जिहड़े सिंह गुरबाणी दा पाठ आप करदे आ, 2 12वां गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी चाहुंदे आ। पहला 1107 नंबर अंक दे उत्ते है गुरु नानक साहिब जी दा, दूजा 133 नंबर अंक दे उत्ते है गुरु अर्जन साहिब जी दा। सवेर दे दीवान विच वी बेनती कीती सी, मैं रिपीट कर दिंदा, असीं सुभाअ पाल लिया है अपना, सौखियां चीज़ां नूं असीं छेती समझ लैंदे हां ते फिर असीं आदी हो जांदे हां उहनां चीज़ां दे। उदाहरण मात्र, कोई भी साडा फंक्शन होवे प्रोग्राम होवे ते असीं प्रैफर करदे हां भाई साहिब नूं, बेनती करदे हां भाई साहिब लाख खुशियां पातशाहियां वाला शब्द पढ़ो। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 2 ਆ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 4 5 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀਏ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 4 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਹ 4 5 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਆ ਸੋ ਚਿੱਤ ਧਰ ਹਾਂ, ਅਨਸਿਓ ਤੋਰ ਫੇਰ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਲਾਲਣ ਪਾਇਓ ਰੀ ਸਖੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਖੀ
राम की तू माखी, जहां दरगंध तहां तू बैसे, ए बिद देखी आंखी। ते मैनू लगे भी अज मेरी लॉटरी निकल आई, मैं अज वो शब्द सुना जिहड़ा मैं अज तक नहीं सी सुनिया। भी मैनू फिर पता लगा भी गुरबाणी दे विच आ शब्द भी हैगा आ, गज साढ़े तै तै धोतियां तेरे पायन तग, गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ ने बग, ओए हर के संतन आखिए बनारस के ठग। बाबे ने आखिया गड़व्या वाले, चिट्टिया धोतिया वाले, चिट्टिया चादर वाले, जिन्होंने गज गज लम्बे सरोपे गलां च पाए आ, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ये सब ठग आ, ये चोर आ। ऐदा बाबे कबीर ने इदा आख्या। तो मैंने लगा भी अच्छा गुरबाणी च आ भी लिखा, अही खंड पाठ ही करा छे, सानू पता नहीं लगा। तो जिहड़ा गुरु अर्जन साहब का बारह माव है हर गुरुद्वारे च पढ़िया जाता। हुण मैं तुहाडे सामने पाठ किया, पर हो सकता मेरे बहुते भैणा भरावां नूं संगत रूप च ना पता लगा हो भी बाबा जी जेठ का महीना सुना रहे हैं। पर जो गुरु अर्जन साहब का बारह माव पढ़ते हैं, जिथे बाबे ने आख्या हर जेठ जुड़न का लोहड़ी है, जिसे अगे सब निवान, तो साढ़े मुखारबिंद चो निकलता सतनाम श्री, क्योंकि सानू पता ही उदों लगता भी आह वाह जेठ का महीना। जिहड़ा गुरु अर्जन साहब का गुरु नानक साहब का बारह माह, महाराज ने शब्द उही वरते, गल उही कीती, पर थोड़े जे बदलवे शब्दां च कीती। बाबे ने आख्या मां जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे, हे मेरी मां जेठ का महीना भी तां सोहना लगता वा जे रब ना विसरे, उहदे गुण ना जीवन चों दूर होण। मेरे जीवन दे विच जिन्नी मिठास आ, मेरे जीवन दे विच जिन्नी ठंडक आ, ये रब्बी गुणां दे करके। नहीं तो बाबे ने आख्या जे मैं परमात्मा के गुणा नूं चेते नहीं करता तो की होएगा। हजूर ने आख्या थल तापें सर भार सा तन बिनो करे, जिवें जेठ का महीना, जेठ के महीने च टंपरेचर वधदा आ, गर्मी वधदी आ, सूरज तपदा आ, सूरज की तपत दे नाल धरती तपण लग पैंदी आ, दरियावां दे विच झीलां दे विच बरेतियां ते जिहड़ा थोड़ा बहुत पानी हुंदा हौली हौली सुकना शुरू हो जाता, तो पंछी जिहड़े आ उह पानी दे नाल व्याकल, प्यास नाल व्याकल हो जाते। बाबे ने आख्या जदों मेरे अंदर, हुण समझो सूरज किहड़ा, एक

हरख सोग तेरे है न्यारो, ना है मान अपमाना, आसा मनसा सकल त्यागे, जागते रह निराशा, काम क्रोध जे पर सैनाहन, ते काट ब्राह्म निवासा, घोर कृपा जे नर को कीने, ते एह जुगत पशाने, नानक लीन पयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी, गुर कृपा जे नर को कीने, ते एह जुगत पशानी।

सच्चा तेरा क्रम सच्चा निशान, सच्चा तुदे आख्या लख करोड़, सच्चे सब तान सच्चे सब जोर, सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह।

0: ना होई। तू करताल करना मैं नाही जाहु करी ना होई। मलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत नाल जाई लख्या रहाओ। जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूरिया। तू सच्चा साहिब सिस वाले जिन कीती सो पार पिया। कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जोग सबदंग ज्ञान सबदंग बे सबदंग ब्राह्मण है खत्री सबदंग सूर सबदंग सूद्र सबदंग प्राकृत है सर्व सबदंग।

तिस मोहन लाल प्यारे, हाँ फिरों को जंतिया। तिस दस प्यारे सिर तरी उतारे, एक भोरी दर्शन दीजै। नैन हमारे प्रे रंग रंगारे, एक तिल पीना तेरी जय।

जान नानक गुरपूरा पाया, सगली तिखा बुझंतिया। सा मत देह दयाल प्रभ, जित तुम्हें आराधा। नानक मंगे दान प्रभ, रेन पाग सादा। परम सम्मान योग जुगो जुगे अटल, चवर शतर सिंहासन दे मालिक, वालिये कुल आलम सरवरे कायनात, दीन दुनी दे मालिक, निमाणिया दे माण, निताणिया दे ताण, न्योटिया दी ओट।

भुला चुका के मां सो संग जी समा हो चुका है गुर शब्द विचार दा विचारां दे स्थान पांगे सरकार जो पैसे पंचान सिंह जी आओ उन्हां पासों गुरमत विचारां सरवण करके अपना मनुखा जम सफला करिए जी बुलाओ फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की

तेर सदा गौर शब्दी रंग माण धन वाहिगुरु साहिब जी गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाइए जोग बन का मिर्ग मुक्त सब होग नगन फिरत

बिंद राख जो तरिये पाई, खुश रहे क्यों ना परम गत पाए। कहो कबीर सुनो नार पाई।

बोध अकत कथिए सहज प्रभ गुण गावे। राम नाम निरसाल रसिया रवे सच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री धर मोहयाड़ी पिर संग सूती राम, गुर के भाई चलो साच संगूती राम। तन साच संगूती हर संग सूती संग सखी सुहेलिया, एक भाई एक मन नाम वसिया सतगुरु हम मिलिया।

पहुपन्यनो जोत संभाये त्रिभवन सारी राम कट कट राव रिया अलखु पारी राम अलख अपार अपार साचा आप मार मलाई है हमें ममता लोभ जल हो शब्द मैल चुकाई है दर जाए दर्शन करी पाणे तार तार नुहारिया

मोहि प्रेम पिराय प्रावे अवनाशी राम अवगतो हरनाथ नाथे तिसे पावे सोथिए कृपाल सदा दयाल दाता। जिया अंदर तू जिये मैं अवर ज्ञान न ध्यान पूजा हर नाम अंतर वस रहै। एक पवनी अठ न जाना नानका सच गहरे पिंडड़ी रहन भली दिन सुसुहाई राम। निज कर सुतड़िए परम जगाई राम नव हाण नव धन शब्द जागी अपने पिर पाणिया तज कूड़ कपट संभाओ दूजा चाकरी लुकानिया।

प्रीतम पावै। तज मान मोह बकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बखंडनो हुए दास दासी तज उदासी।

अंदले टोनी ओ जू है पहम बहु प्रकार करो कृपा सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए ठीठ मिठी मने लागे नाम लैण न आवे ग्रह बने तीरे भरत पूजा बाट काटे जोहनी नानक पंपे दया थारो मैं नाम अंदले टोहनी मोहे अनाथ प्री नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चितराई मोहे नह रिझावो कर मुखो नह चतुर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप न लैण बंके जय पावे तै रख तू ही जय जय जय जय अंपहै सगल जा को करनापत गत किन लखो नानक पंपै सेव सेवका ज्यो जानो त्यों मोहे रखो मोहे माछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सरै मोहे चात्रिक तुम बूंद त्रिपत मुख परे मुख परे हरे प्यास मेरी जी ही आ प्राण पति लाडली लाड लंडाए सब मैं मिल हमारी होए गति चीत चितव मिंट हमार अंधारे ज्यो आज चकवी दिन चरै नानक पंपै प्री संग मिली मछली नील नंबी सराय तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बन हरा हर हरा स्वामी सुखे गामी आनंद मंगल रस कणा नवल नव तन्ना बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोहे देख मोही सगल सहसा दुख हरा नानक पंपै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा बिलावल महला पंजवा शांत मंगल एकोंकार सतगुर प्रसाद सलोक सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखानद पियो सुख सागर प्रभ पेटिए नानक सुखी हो तेह जियो शांत सुख सागर प्रभ पाहिए जब होवे पागो राम मान न मान वंजाइए हर चरणी लागो राम छोड़ स्यान पुचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरणाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ

ठहराई राम नानक भगत पाउ कर दयाल की जीवन पद पाइये राम श्री गोपाल ना उच्चर है बल गये दो चरण रसना राम रसना कोट जोनी रसना राम नानक बिन हर अवर जे चहना बिष्टा कृपा पसमा राम लाए बिरहों भगवंत संगे होए मिल बरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा होम।

सो अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोजो बनभागीओ मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सद गाई है पार ब्रह्म के रंगे राम सो प्रभ सद ही सेवी है पाइये फल मंगे राम नानक प्रभ शरनागति जप अंत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरा जिन सब किछ दीना राम बड़पागी मेला बड़ा गुरमुख परची ना राम बां पकड़ तुम ते काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे क्या सुख सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण पही पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम नानक नानक सिमर सिमर नारायण पहे पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पुजामी राम नानक उदरे जप हरे सभु का स्वामी राम रस भिन्नी अड़े अपने राम संगे से लोहन नीके राम प्रभ पेखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखया रस फीके राम नानक जल जलय समाया ज्योति ज्योत मीके राम बलावल की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गावेया करनाद बलाबल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तुर मस्तक पूरा भाग सब दिन सरैन गुण उचरै हर हर हर उर लिवलाग सब तन मन हरिया होया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन अज्ञान चिराग जन नानक जीवै देख मारू एक निमुख कड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तभी कीजिए जब मुख होवे नाम राग नाद शब्द सोहणे जान लागे सहज ध्यान राग नाद छोड़ हार सेविए तां दरगे पाइये मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिये चूके मन अभमान पौड़ी तू हर प्रभु आप अगामू है सब तो दि पाया तुद आपे आप वर्तदा सब जगत संभाया तुद आपे ताड़ी लाइए आपे गुण गाया हर त्यावै भगतें दिन सरात अंत ले छुड़ाया जिन सेविया तिन सुख पाया हर नाम समाया श्लोक महला तीजा दूजे पाए बलाबल ना हो वई मन मुख थाए ना पाई पाखंड भगत ना हो वई पार ब्रह्म ना पाया जाए पार ब्रह्म ना पाया जाए मन हठ कर्म कमावने थाए ना कोई पाए थाए ना कोई पाए नानक गुरमुख आप विचारी है बिचों आप गवाए आपे आप पार ब्रह्म है पार ब्रह्म बसिया मन आए जमन मरना कटिया ज्योति ज्योत मिलाए महला तीजा बलावल करो तुम प्यारो एक स्यों लिवलाए जन्म मरण दुख कटिए सच्चे रहे समाए सदा बलावल आनंद है जे चले सतगुरु पाई सत संगति बह पाओ कर सदा हर के गुण गाए नानक से जन सोहणे जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जियां बिच हर आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर के वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मिली सरबत सौ निसल जन ढंग धर
हर सबना काहे खसम सो भगत जन चित कर तुद अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झड़। सलोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदे ते ब्राह्मण जे चले सतगुर पाए जिनके हिरदे हर वसै होमै रोग गवाए। गुण गावै गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए। इस जग में है बिरली ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चित लाए नानक जिन को नदर करे हर सच्चा सी नाम रही लिवलाए। महला तीजा। सतगुर की सेव न कीतिया शब्द ना लगो पाओ होमै रोग कमावना अंत दीर्घ बहु सवाओ। मन हट कर्म कमावने फिर जो नहीं पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनु आपे लहे मलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए पौड़ी। सब वडियाइया हर नाम बिच हर गुरमुख त्याईए जे वस्त मंगिए साई पाईए जे नाम चित लाईए। गहज गल जी की चय सतगुरु पास तां सर्व सुख पाईए। गुरपुरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाइए जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाइए। सलोक महला तीजा। सतगुर ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा को इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख हुआ सच वसिया मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया अनहद शब्द वजाए सचो दहन दिस पसरिया हर के सहज सुभाए। नानक जिन अंदर सच है से जन छपे ना किसे दे छपाए। महला तीजा। गुरसेवा ते हर पाईए जा को नदर करे मानस दे देवते पहे सच्ची भगत जिस दे होमै मार मलायन गुर कै शब्द सच्चे नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे पौड़ी। गुर सतगुर बिच नावै की वड्डी वड्याई हर करते आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन उना अंदर हिरदे पाई। निंदक दुष्ट वड्याई वेख न सकन उना पराया भला ना सुखाई। क्या होवै किसी की चख मारी जा सच्ची सों बनियाई जे

साकीनो मीच मिलाई मिललैया खैरे तनवंता अर निर्तन मनई ताकि कछु ना कानी रे राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो कौन बढ़ानी रे हर की सेवक जो हर पाए तिन की कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कर...

कबीर सुनो रे संत हो, मिलहे सारंग पानी रे बलाबल विद्या ना परो, बाद नहीं जानो हर गुण कथित सुनत बराबर बौरानो। मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक सियानी मैं बौरा, मैं बिगड़ियो बिगड़े मत औरा रहाओ, आप ना बौरा राम कियो बौरा, सतगुर जार गयो ब्रह्म मोरा, मैं बिगड़े अपनी मत खोई, मेरे भरम भूलो मत कोई, सो बौरा जो आप ना पछाने, आप पछाने ता एक कह जाने, अभे ना माता सो कभू ना माता, कह कबीर रामे रंग राता बलाव, ग्रह ताज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा, अजो बिकार ना छोड़े पापी मन मंदा, क्यों छूटो कैसे तरो भव जल निध भारी, राख राख मेरे बीठुला जन सरन तुम्हारी रहाओ, बिखे बिखे की बासना तजी ना जाए, अनक जतन कर राखिए फिर लपटाई, जरा जीवन जोबन गया किछ किया ना निका, एह जियरा निर्मोल को कौडी लग मीका, कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी, तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी, बिलावल नित उठ कोरी गागर आने, लीपत जियो गाए गयो ताना बाना कछु न सूजे, हर हर रस लबटेओ हमारे कुल कौने राम कहो, जब की माला लई नपूते तब ते सुख ना पहो रहाओ, सुनो जठानी सुनो दरानी अचरज एक पहो, सात सूत इन मुंडिये खोए ए मुंडिया क्यों ना मोयो, सर्व सुखा का एक कुमार स्वामी सो गुरु नाम दियो, संत प्रहलाद की पैज जिन राखी, हर नाकश नखे बिंदरियो करके देव पितर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन, संत लै उदरियो बलावल को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे कर दिंदवाजा, रहाओ तेरो जन होए सोए कतंडूले, तीन पवन पर छाजा हाथ पसार सके को जन को, बोल सके ना अंदाजा, चेत अचेत मूड मन मेरे बाजे अनहत बाजा, कह कबीर संसा भ्रम चूको, ध्रुव प्रहलाद नवाजा, बलाबल राख लियो हम ते बिगड़ी शील धर्म, जब भगत ना कीनी हो अवमान टेढ़ पगरी, रहाओ अमर जान संची को एहो काया, ए मिथया काची गगरी, जिने नवाज साज हम किए तिसे मिसार अवर लगरी, सदिक तुहे साध नहीं की कहियो, सरन परे तुमरी पगरी, कह कबीर ए बेनती सुनहो मत कहलो जम की खबरी, बलावल दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार, रहाओ तुम धन धनी उदार त्यागी, सर्वनन सुनियत सुजस तुम्हार, मांगो कहे रंक सब देखो तुम ही ते, नीरु निस्तार जय दियो नामा बिबत सुदामा, तिनको कृपा पई है अपार, कहत कबीर तुम समरथ दाती चार पदार्थ दीत नंबार, बलावल डंडा मुंदरा खिंथा आधारी, परम कह पाए पवे भीख तहारी, आसन पवन दूर करम भवरी,
छोड़ कपट नित हर भज भवरे रहाउ जह तू जाचे तू तिर भवन भोगी कह कबीर कैसो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत न उपजे जन को जन को जन कहां करें बिचारी रहाउ त्रिग तेन त्रिग तन त्रिग धन त्रिगे माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी समाया को दृढ़ कर राखो बांधी आप बचनी क्या खेती क्या लेवा दे परपंच झूठ गुमाना कहत कवि कह कबीर ते अंत बगूते आया काल निधाना बलाबल शरीर सरोवर भीतरे आछे कमल अनूपा परम ज्योत परखोत्म जाके रेख न रूप रे मन हर भाजे परम तजो जग जीवन राम रहाओ आपत कछु न दिसई न दिसी जात जह उपजे बिनसे तही जैसे परवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार कह कबीर सेवा करो मज मन मज मुरार बलावल जन्म मरण का भरम गया गोविंद ले बिलागी जीवत सुन समानिया गुर साखी जागी रहाओ काशी ते तुन उपजै तुन काशी जाई काशी फूटी पंडता तुन कहा समाई त्रिकुटी संद मैं पेखिया घट हूं घट जागी ऐसी बंद समाचरी घट माहे त्यागी आप ते जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जा कै हृदय बसै सो जन क्यों डोलै देव मानो सब सुख नौ निद ताँ कि सहज सहज जस बोलै देव रहाओ ताबे मत जो सब मह पीखै कुटल गांठ जब खूलै देव बारंबार माया ते अटकै लै नरजा तान मन तोलै देव जह

प्रीत की उलै देव बलावल बाणी भगत नामदेव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सफल जन्म मोको गुर को गुर की ना दुख मिसार सुख अंतर लीना।

जियो समाना बलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्द देख सब को हसै ऐसी दशा हमारी अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किस नहीं भव खंडन राम सगल जी शरणागति प्रभ पूर्ण काम रहाओ

कैरवदास अकत कथा बहु काय करी जय, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दी जय। बलावल जह कुल सार बै सुनो हुए, वर्ण अभरण रंक नहीं ईश्वर, बिमल बास जानिए जग सोए रहाओ। ब्राह्मण बैस सूद हर खत्री, डोम चंडार मलेश मन सोए, हुए पनीत भगवंत भजन ते, आप तार तारे कुल दोए। धन सो गाओ धन सो ठाओ, धन पुनीत कुटंब सब लोए। जिन पिया सार रस तजी, आन रस होए रस मंगन डारे बिक खोए। पंडित सूर शतरपत राजा, भगत बराबर और न कोए। जैसे पुरैन पात रहे जल, समीप पहन रविदास जन्मे जागोए। बाणी सदने की राग, बलावल एक ओंकार, सतगुर प्रसाद निरपकन्या के कारण। एक पिया पेख धारी, कामार्थी सुवार्थी वाकी पैज सुवारी। तब गुण कहा जगत गुरा, जौ कर्म न नासै, सिंह शरण कत जाई है, जौ जम्ब ग्रासै। रहाओ एक बूंद जल कारण, चात्रिक दुख पावै, प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवै। प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बिरमावो, बूड मुए नौका मिले, कहो काहे चंडावो। मैं नाही कछ हो नाही, किसाहे न मोरा, अवसर लज्जा राख लो, सदना जन तोरा। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भउ निर्वैर, अकाल मूर्त आजूनी सहभंगुर प्रसाद। राग गौंड चौपदी, महला चौथा कर पहला, जे मन चित आस रखै, खारे ऊपर ता मन चंदे अनेक, अनेक फल पाई। हर जाने सब किछ जो जिए वरते, प्रभु घालिया किसे का एक तिल ना गवाई। हर तिस की आस की जे मन मेरे, जो सब मह स्वामी रिहा समाई। मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई, जो बैन हर आस अवर काहू की जय। सा नैफल आस सब बिरथी जाई रहाओ, जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत, तिसकी आस लग जन्म गवाई। इन मैं इनकै कछ हाथ नहीं कहां करे, एह बापुड़े इनका वाया कछूना वा वसाई। मेरे मन वास कर हर प्रीतम अपने की, जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किछ आस अवर करहै पर मृति, मत तू जाने तेरे किते काम आई। ए आस पर मृति भाउ दूजा है, खिन मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा घालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसे तू आस करावै तैसी को आस कराई। किछ किसी के हाथ हाथ नाही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ मुझाई। जन नानू की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गौंड महला चौथा, ऐसा हर सेविए नित त्याई है, जो खिन में किल विख सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजे,

चुरैया, नह कपट सेवा कीजा हर केरी, ता मेरे मन सर्व सुख पईया, जिस दे बस सब किछ सो सब दू बड़ा, सो मेरे मन सदा त्याइया, जन नानक सो हर नाल है तेरा, हर सदा त्याए तू तुद लै छड़ैया। गौंड महला चौथा, हर दर

तार पांच दूत भागे बिकराल जुए जन्म न कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाला पार ब्रह्म जप सदा निहाला रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्व समाही अपने दास का हलत पलत सवार पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हारा औखद कोट सिमर गोबिंद तंत मंत भजिए भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूर्ण फल पाए करन कारण समरथ दयार सर्व निधान महाविचार ना

तपो मेरे मीत, निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए, दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गाव तरिए संसार, बड भागी पाइए पुरख पार रहाओ, जो जन करे कीर्तन गोपाल, तिस को पोहे न सके जमकाल, जग में आया सो प्रवान, गुरमुख अपना खसम पछान, हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद, सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूर्ण मंत, हर तन खाट किए पंडार, मिल सतगुर सब काज सुवार, हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा, गोंड महला पंजवा, भव सागर मोहित हर चरण, सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंथ, महा विचार पांच दूत है मंथ।

शिवदेव तेल नहीं बूझ अलाखियों पहेव प्रेम भगत जिस आपे दे जग मैं विरले के मोहि निर्गुण गुण कछु नाहे सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे नानक दीन जाचे तेरी सेवा कर कृपा दीजे गुरुदेव गौंड महला पंजवा संत कालिया धरत मिदारो संत का निंद काश ते टारो संत को राखो अपनी जी नाल संत

पंजवा अचर्ज कथा महा अनूप परमात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ ना ए बूढ़ा ना ए बाला ना इस दुख नहीं जम जाला ना ए बिनसे ना ए जाए आद जुगादि रहा समाए ना इस यूसन नहीं इस मसीत ना इस दुश्मन ना इस मीत ना इस हरख नहीं इस सोगा सब कुछ इसका है एक करने जोग ना इस बाप ने इस माया ए परपा ए परंपर होता आया पुन का इस लेप ना लागे काट काट अंतर सद ही जागे तीन गुणा एक शक्ति उपाया महा माया ता की है छाया असल यशे

काम क्रोध इस तन ते जाए, राम रतन वसे मन आए, सफल जन्म ता का परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागै, जन्म जन्म का सोया जागै, चरण कमल जन का आधार, गुण गोबिंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नान को सुख पावे जन धूर, राग गौंड अष्टमिया महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कर नमस्कार पूरे गुरदेव, सफल मूर्त सफल जाकी सेव, अंतर जामी पुरख मिधाता, आठ पहर नाम रंग राता, गुरब गोबिंद गुरु गोपाल, अपने दास को रखनुहार हाओ, पातशाह सा उमराऊ पति आए, दुष्ट हंकारी मार पचाए, निंद कै मुकी नो रोगा, जय जयकार करी सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जपै गुरदेव भगवंत, संगत के मुख उजल भये, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाहे, पार ब्रह्म गुर बे प्रवाहे, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब तरन, जन की निंदा करे ना कोए, जो करै सो दुखिया होए, आठ पहर जन एक ते आए, जमुआ ता के निकट न जाए, जन नर वैर निंदक हंकारी, जन पल माने निंदक वेकारी, गुर कै सिख सतगुरु दे ते आया, जन उबरे निंदक नरक नरक पाया, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, सत बचन वरते हर द्वारे, जैसा करे सो तैसा पाए, अभिमानी की जड़ सरपन जाए, नि धरियां सतगुर धर तेरी, कर कृपा राखो जन केरी, कौ नानक तिस गुर बलिहारी, जाके सिमन पैज सुवारी, राग गौंड बाणी भगतां की, कबीर की कार पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संत मिलै किछ सुनिए कही है, मिले असंत मस्ट कर रही है, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रहिए रहाओ, संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी, बोलत बोलत बड़े बिकारा, बिन बोले क्या करे बिचारा, कौ कबीर छूछा घट बोलै, भरिया होया सो कबहू ना डोलै, गौंडा नरु मरै नर काम न आवै, पशु मरै दस काज सुवारै, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे रहाओ, हाड जले जैसे लाकरी का तुला, केस जले जैसे घास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड मह लागे, गौंड आकाश गगन पताल गगन है, क्यों दिस गगन रहाई ले, आनंद मूल सदा प्रखोतम, काट बिनसे गगन न जाई ले, मोहे बैराग पहु ए ज्यो जाए, कहाँ कहत हो कहो, कर मैं कैन जियो दीन रे, हर मैं तन है तन मैं हर है, सर्व निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे हुए सो हुए रे, राग गौंड बाणी कबीर जीव की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पूजा बांध पहला करन डारियो, हस्ती क्रूप मूंड में मारियो, हस्त भाग कै चीसा मारै, या मूर्त कै हम बलिहारै, अह मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तोर,
नरहाउ मैरी महावत तुझ डारू काट, इसे तराबु कालू साट, हास्त ना तूरै तरै त्यान, वा कर दे बसे भगवान, क्या अपराध संत है कीना, बांध पूट कुंचर को दीना, कुंचर पूट ले ले नमस्कार, बुझी नहीं काजी अंधियार, तीन बार पतिया परलीना, मन कठोर अजूना पतीना, कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद में जन की जेंद गौण।

बलहर ना ठहराए, नाम बिना कैसे पार उतराए, कोम्ब बिना जल ना टिकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, खंजारू तिसै जो राम न चीतै, तन मन रमत रहे मैं खीत रहाओ, जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइया, सूत बिना कैसे मणि परोइया, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाइया, साधु बिन तैसे अवगत जाइए, जैसे मात पिता बिन बाल न हुए, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खासम दुहागन ताज वाहेरी, कह कबीर एक एक कर करना, गुरम खोई बहर नहीं मरना, गोंडा कूटन सोए जो मन को कूट कूटै, मन कूटै तो जमते छूटै, कोट कोट

बनारस असमस्ता मुख वेद चतुर पढ़ता सगल धर्मस्ता गुर ज्ञान इंद्रिय दृढ़ता खट कर्म सहता रहता सेवा सक्त सुभादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंद भज नामा तरस पव सिद्धं गौण नाथ ब्रह्म जैसे मृगाए प्राण तजे वाकू ध्यान न जाए।

ना जानो बाप बिठला महादेव राव नरते सुर हुई जात निमख मैं सतगुण बुद्ध सिखलाई नरते।

रावण से तीसरवर होई, करके जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना, दोहा ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजे नेहोरा मुसलमान मसीत, नामे सोए सेविया जहां देहोरा ना मसीत। राग गौंड बाणी रविदास जीओ की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मुकांद मुकांद जपो संसार, बिन मुकांद तन होए ओहार। सोई मुकांद मुक्त का दाता, सोई मुकांद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे, ता के सेव को सदा आनंदे। रहाओ मुकांद मुकांद हमारे प्राणं, जाप मुकांद मस्तक निशानं। सेव मुकांद करे बैरागी, सोए मुकांद दुर्बल तन लादी। एक मुकांद करे उपकार, हमरा कहाँ करे संसार। मेटी जात हुए दरबार, तुही मुकांद जोग जुगत तार। तुही मुगत मुकांद जोग जुगतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रंगास। कर कृपा लीने कीट नाश, कौर अवदास अब तृष्णा चूकी। जप मुकंद सेवा ताहू की, गौंडा जे ओ अठसठ तीर्थ नावै। जे ओ द्वार सुशिला पुजावै, जे ओ कूप तटा देवावै। करै निंद सब मिर्था जावै, साधका निंद कैसे तरे। सर पर जानो नरक ही परै रहाओ, जे ओ ग्रहण करे कुल खेत। अर्पै नार सिंगार समेत, सगली सिमरत सर्वनी सुनै। करै निंद कवने नहीं गुनै, जे ओ अनक प्रसाद करावै। भूम दान शोभा मंडप पावै, अपना बिगार बराना सांडै। करै

जहाँ आप गया पाओ पहगा, गुर चरनी सेवक लागा, गुर सतगुर भरम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, राम कली महला पहला, शादन भोजन मंगत भागै, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पथ खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई, जोगी जुगत सहज घर वसै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया भाए शब तृप्ता सह रहाओ, पंच बैल गड्डिया दे भारी, राम कला निभै पत सारी, धर टूटी गाडो सिर भार, लकड़ी बिखर जरी मंझ पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बेयोगी, भुगत नाम गुर शब्द बिचारी, अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगूटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मंदरा हर गुर शरणा, नानक राम भगत जन तरना। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, राम कली महला तीजा घर पहला, सतयुग सच कहै सब कोई, घर घर भगत गुरमुख होई, सतयुग धर्म पैर हैं चार, गुरमुख बूझै को विचार, जुग चारे नाम बडियाई होई, जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम न पावै कोई रहाओ, त्रेतै इक काल कीनी दूर, पाखंड वरत्या हर जान नदूर, गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई, द्वापर दूजै दुबधा होए, भरम भुलाने जाने दोए, द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए, कलयुग धर्म कलाए करहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए, माया मोह अत गुबार, सतगुर भेटै नाम उधार, सब युग मैं साचा एको सोई, सब मैं सच दूजा नहीं कोई, साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम बखाणै कोई, सब युग मैं नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वडियाई होई। राम कली महला चौथा, कर पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद, जे बडभाग होवै बडभागी, ता हर हर नाम त्यावै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करु सद प्राणी, हृदय प्रकाश होवै लिव लगै, गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ, हीरा रतन जवे हर माणक, बहुसागर भरपूर किया, जिस बडभाग होवै बड मस्तक, तन गुरमत कड कड लिया, रतन जवीहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिख लाया, भागहीन मन मुख नहीं लिया, त्रिण उलै लाख छपाया, मस्तक भाग होवै तुर लिखिया, तन सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवीहर पावै, धन धन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाए, दुरमत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद पाए, राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुनै कहै सो मुक्ता, राम जपत सुहाए रहाओ, जे बड़ भाग हुए बड़ मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहु कर कृपा, सब दालद दुख लह जाए, हर के लोग राम जन लीके, पागहीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कहें जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर